कभी बाज बेनती चौपाई पातशाहे दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काबू

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे असि तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकटने आए हैं। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें

पावन बचन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज उस निरंकार दे नाम दी पावर दसदे ने। कहंदे ने मैं तत्ती तवी ते बह के भी शुक्र मनाया, खुशियां दे गीत गाए, ओदे पाणे नू खिड़े मत्थे मन्ने। पर गुरसिख होवे लखां सुख लै के हजारां सुख लै के भी परेशानियां नाल नजर आवे फिर गल बनदी नहीं। किनका मात्र साडे जीवन विच जरूर नाम दा प्रताप होवे, ओदी निशानी की है, सहजता बन जाती है। रब ना करे कदे कदे दुख भी आ जाए, वह भी फिर सुख लगन लग पैंदा है। जे सुख दे ता तुझे अराती, दुख भी तुझे तिहाई। जे सुख दे ता इत ही राजा, दुख विच भूख मोख। कहंदे ने भुख दे दुख दे सुख दे इक रस हो के जिंदगी जीना

न्यूट्रल रहना, सहज अवस्था विच रहना ते सदा उदा शुकर करना, दुखां विच अरदास शुकराना करना, ते जे सुख बहुते आ जाण फिर भुलना नहीं, गवाचना नहीं, तां वी उदा शुकराना करना। गुरु अर्जन देव जी दी पावन असीस ले लईए, जिन्हां ने शांतमई तपदी हुई तवी नूं भी एक कह के करके दिखा दिता भी नाम विच जो शीतलता है, पावर है, ठंड है, टिका है, वो किसी होर चीज विच नहीं।

करनी करमी वहे कलाम नानक सच्चा सच नाए सच सभा दी बाण पौड़ी नाए मन्ने सुख उपजय नाम गत होई नाए मन्ने पत पाई है हृदय हर सोई नाए मन्ने भव जल लंगी है फिर बिघन ना हुई नाए मन्ने पंथ प्रगटा ना मैं सब लोई नानक सतगुर मिलै नाओ मन्नी जिन देवै सोई।

कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूं मिठे नहीं रे पछता। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आ। तत्काल यह मथुरा जगतारन को अवतार बना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बैराड़ी महला चौथा। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देवे स्वामी।

दान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंद है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अचूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरेक है, पुजंग प्रछंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते।

नामी समस्ति स्वरूपे परपंगी परमात्ते समस्ति विभूते कलंकं विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो वस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेतेवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसांग नमो कूप कूपे नमो दान दानी नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानं सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता दो उर्द अर्दंग अगंग उग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग छेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश है अपेश है पुजंग प्रयाचंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्णाते नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्णंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग पुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काल

चंपा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्तिन अनाश आजान बाहु साहन साहु राजन राजु पानन पानु देवान देव उपमा महानु इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपहन काम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड्य अंडंड बाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे पुजं प्रयाचंद चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जानी चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाली चत्र चक्र वाकाली चत्र चक्र पासी चत्र चक्र वासी चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिशयदिशयदृशयकृशय भगवती चंत्व प्रसाद कथते क्या छिज देशय क्या भिज भेषय क्या गंज कर्म क्या भंज भरमय क्या भिज लोक क्या दित सुख के अवतूत वर्णय के विभूत करने के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझाय के अशोक वर्ण के सर्वा अभरण के जगतंग कृति है के छत्रंग क्षत्रिय के बरमंग स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आदि देव है के आप अपे वह के चित्रंग वहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रहा कह कि पाक वे वह के गय भूल गय वह के अफूल गुना है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रही मैं के कर्मंग करी मैं के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कली में के परमंग फही में के अकल आलाम के साहिब कलाम के हुसनल वजू है तमामुल रुजू है हमीसल सलाम सलीकत मुदाम गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजाइक यकीन है अनिकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छिज है छूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेक है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है भूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है भगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलीख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है
अनिल हैं, अनाद हैं, अनित्य हैं, सुनित्य हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चर प्रचन त्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राण, सर्वंग त्राण, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग युक्ता, सर्वंग मुक्ता, रसावल छन्त्व प्रसाद, नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे अपंगं वेपुते, परमात्म परमाते सदा सर्वसाते, अगाध स्वरूपे निर्बाध वेपुते, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे, न पुत्र न पुत्र न सत न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाक सरी कह अमितो अमी कह सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंत्व प्रसाद इजाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशर सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्न जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजिल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहसुल निवास है कि सर्वल गवन है हमीसुल रवन है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है हमीशुल अपेक है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मदपार छंत प्रसाद मुन मन पर राम गुन गन मुदाम हर बर अगंज हर नर पर पांजु अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड वर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुन गन प्रणाम जल तल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित उदार जल तल अमंड दिस विस अपांड जल तल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रेतर तुरास आ जान बाहु इक सदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जगात आज जन बात अंशंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अंडट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अणवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंत व प्रसाद करुणालय है हर काल्य है कलकंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी कृत है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं सात रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विपूते
ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬੰਕ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਵਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਕਚਰੀ ਚੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਵੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਭੰਜ ਅਲਖ ਅਭਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਦ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਠਾਹ ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੀ ਨਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਭਰਮੰਗ ਗੰਜੀ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਚੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪਰਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪਰਨਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਵਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰਗ ਬਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇ ਬਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇ ਵਿਗਨੀ ਮੇ ਹਰਿਅੰਗ ਕਰਿਯੰ ਕਰਿਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੋਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ

गाड़ी गड़ान के तोड़ नहार, सुबात नहीं चक चार लवैया, साहिब श्री सबको सिर नायक, जाचक नेक सुवेक दिवैया, दानव देव फनिंद निसाचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन परतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के भो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सबै अवलोक चपेंगे,

अनेक शुभम वर्षाज भरेंगे। ब्रह्म हे सर्वसन सची पत अंत फसे जम फास भरेंगे। जी नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे बक ध्यान लगायो। नाथ फिरो लिये सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो। पास कियो बख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो। साच कहूं सुन लिहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हरवाची दिशा में काहू पछा को शीस निवायो। को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो। पूर क्रिया पुर जो सब ही जग श्री भगवान को पे।

ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करू प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काबो। आप हाथ दै मोहे बचावो, सुखी बसे मोरू परिवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिय। सब बैरन को वास संगरिय, पूर्ण हुए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है। मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छाओ। श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा, राख लिहु मुहि रखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंदुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा। काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो। देव दै जच्छन उपजायो, आदंति कै अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने। काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा। प्रजा तर्क तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कबू। तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तारै। आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालमु। जानत भेद भेद अर आलमु, निरंकार निर्भकार निर्लम्बु। आद अनिल अनाद असंभु, ताका मूढ़ उचारत भेदा। जाको भेव न पावत वेदा, ताका कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव। निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुध है जेती। वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। के बिसजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कई भूपा, अंडज जेरज से तजकीनी। उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा। कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सिष्ट दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो। सिखो वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तब सरणी परे। तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है। ताकि काल नित नह है, रक्षा हुई ताहि सब काला। दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला, कृपा दृढ़ तन जाहि निहरे हो। ताकि ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई। दुष्ट छाह छब सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुभारा। काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा। दारिद दुष्ट दुख ते

दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को क्षय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई। अडिल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो याकी एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत 1760।

भैया पाए गही जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बोपीत कह हम एक न जान्यो श्री सुपान कृपा तुम्हरी कर।

जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नवसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक यो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यो चित लाया नित्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिनवर न देखो कोई हर बिनवर न देखो कोई नदरी हर निहाल आय वे संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुरु प्रसादी बुझिया जा विखा हर कह हर बिनवर न कोई कह नानक नित्रंत से सतगुरु मिले दिव दृष्ट होई ये श्रवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए साचा सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मंथन हरिया हुआ रसना रसमानी सचल कविणानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा सुनने नु पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पौन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट की दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तैन एक रूप नव नव निध इस दंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारै जियो गुफंद रखै वाजा पवन वजाया इहो सचा सोहिला सचै कर गावो गावो ता सोहिला कर सचै जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जात दुपावे गुरमुख जिना बुझावे इहो सच सभना का खसम है इस बख्शे सो जन पावे कह नानक सत सोहिला सच्चै घर गावे आनंद सुनो।

अस बड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याही चले है पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रिए सखी सहेली ननद गहेली

ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चिरायहू कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कासिक जुल्हा बूझ मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर स्यों मोर त्याना आसा जग जीव।

पास न देखे आग, काल फास न मुग्ध चेतै, कनिक कामनी लाग, कर विचार विकार पर हर, तरण तारण सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, द्वितीय नाही कोई आसा।

आई आसा पहली करूप कुजात कुलखनी साहुरे पिये बुरी अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी भली सरी मुई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहा कहो कबीर जब लहुरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लहुरी संग पई अब मेरे

दिन दस पांच बहु भले आई, घूंघट तेरो तौ पर साचै, हर गुण गाए कूदह अर नाचै, कहत

है अंग न मूरू, पिंड पर तो प्रीत न तोरू, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम है सुकंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनहो रे लोई।

राम पहचाना। कहत कबीर कर गह तोरी, सूत सूत मिलाए कोरी। आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ न जाना। लोक पतीने कछु न हुवै, नाही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। रहाओ जल कै मज्जन जे गत हुवै, नित नित मेंढुक नावै। जैसे मेंढुक तैसे कोई नर, फिर जो नी आवै।

राई दिन सुनारैन वेद नहीं शास्त्र तहा बसै निरंकारा कह कबीर नरति सहत आवो बावरिया संसारा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा बाणी श्री नाम देव जी की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र बचित्र विमोहित बिरला बूझै कोई सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ।

आन न हुई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ, सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मन मानिया कहत नाम देव हर की रचना। देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर, केवल एक मुरारी आसा

लख जी जल मैं होते बीठल पहला काय करू जतर जाऊं तद बीठल पहला महा आनंद।

बिख नहीं छाटे, उदक माहे जैसे बग ध्यान मडे, काहे को कीजे ध्यान जपन्ना, जब ते शुद्ध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देव बखाने, नामिक के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भाव सी, रामा भगत है चेती अले, अचिंत मन राख सी।

रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संत कै प्रसाद नाम हर पेटुलाओ। आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद

संपत विपत पटल माया धन ता मैं मगन होत न तेरो जन प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन कह रविदास छूट गो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पियाया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता।

रहाओ। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रूबन लगत है। मन बच क्रम रस कसह लुबाना, बिनस गया जाए कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर्सो मोहे प्रीत बनयाई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। भ्रमत फिरत

परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया, ध्यान मान मन एक मई, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुक्त भए।

हर दर्शन पाया, शैन नाई बुतकारिया। ओह कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मह गनिया एह बिद सुन कै जट रू। उठ भगती लागा मिले प्रतख गुसाइयां,

आहार अगन महराख है ऐसा खसम हमारा, उम्मी जल माही तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही, पूरन परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। पाखन कीट गुप्त हुए रहता,

रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भार थिए रहाव, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जणींदी माओ आए सफल से, परवदगार अपार।

टाक्यम कुंजनिया मनहु मचंदड़िया रहाओ, जे जाना मर जाइए घुम न आइए। झूठी दुनिया लग न आप वंजाइए, बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए। जो गुर दसै वाट मुरीदा जोलिए, छैल लंघंदे पार गोरी मन धीरिया। कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया।

अजुनी सैभं गुरप्रसाद राग गुजरी महला पहला चौपदे घर पहला तेरा नाम करी चननाठिया जे मन उरसा हुए करनी कुंगू जे रलै घट अंतर।

रहाउ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत हुए सखाई हर बिन होर रात।

फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत, हर तिस कदे न विसरे, हर हर करहे सदा मन चीत राव। हृदय जिनके कपट बसै, बारहु संत कहाही, तृष्णा मूल न चुकई, अंत गए पछुताहे। अनेक तीर्थ जे जतन करे, ताय अंतर की हों मैं कदे न जाए, जिस नर की दुबदा न जाए, धर्म राय तिस देश जाए, कर्म हुए सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हों मैं मारे, ता हर भेटे सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत नहीं चलो, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा सो फल पा होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ। सतगुर भेटे ता पारस होवे, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दिखिया देवे साच बुझाए।

नानक विण नदरी किचू न पाई है, जिसे नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए। गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना का सीमत उपजै ना का सीमत जाए, सतगुर मिले मत उपजै ताए सोजी पाए। हर कथा तू सुन रे मन, शब्द मन वसाए, ए मत तेरी थिर रहे ता भरम विच हो जाए। रहा

तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सोहेले राख हो राखन हार दयाला नानक करके गोले परम सकार जी सत्संग जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यह सन सत्कार योग ज्ञानी मनमोहन सिंह जी जिन्होंने आप जी ने राग दरबार अंदर बड़ा रस पेना कीर्तन सरवण कराया है, उन्होंने हार्दिक हार्दिक धन्यवाद जी। हूँ आप जी ने अगला जथा आके कीर्तन द्वारा निहाल करेगा जी सत्कार योग ज्ञानी हरभजन सिंह जी लहरी थी उन्होंने जथा, उन्होंने शब्द गायन करने जी। पहला शब्द है श्री राग का, कत्ती राग ने तो उन्होंने तीन राग उन्होंने अज सरवण कराने। श्री राग का शब्द है जी हर बिन जियो जल बल जाओ। ते अगे है जी दूसरा राग तुखारी राग दा, चेत बसंत भला। ते उस तो अगला है जी शब्द बसंत राग दा, ए मन हरिया सहज सपाए। तो आओ उन पासों हम आप राग दरबार अंदर इस तीन शब्द इलाही बाणी तिना रागा सरवण करिए वखरे वखरे। समा ठीक 8 बजे तक उन्हों का, 8 बजे तो बाद भाई साहब अंकार सिंह जी, तो 8:30 समाप्ति होनी जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।

भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुख मनी है ना, उस कर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन बिसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए ओ भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। भुल चुक दी खिमा गुरु बख्शिश करे, रहमत करे तुहाडे साडे ते सभना ते, चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

प्रोगन्ति अरसोगन्ति जलजोगन्ति बहुपात पचार सत्वर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महंस पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे माला गए ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कहूं व्याप्त है उस महानुप्रभु के चिन्हों जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल अतीत होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण करी सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हों पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी की विचार ओ सरुण करी गुर इतिहास इतिहास सरुण करी दस लो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

भगत जना के मन विसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नाग मनी लभदा फिरदा है, कोई कोई सुख लगदा लभदा फिरदा है। पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्ना कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस घर दे रोग कलेश दुख दूर हो जाते। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटा। इस शरीर दे भी कलेश मुक जाते, घर परिवार दे भी कलेश मुक जाते ने, पर इस सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम एदा वासा ही भगतां दे हिरदे विच हुंदा है। भगत जना के मन विसरा, जां इंज कह लईए जिथे सुखमनी वस जाए वह भगत बन जाते। ऐसी बख्शिश आप जी ने माणी है। फुल चुक दिखी मां गुरु बख्शिश करे रहमत करे ते साडे ते सबना ते चढ़दी कला सब दे कारज रास। भाई लखविंदर सिंह जी वो आप जी दे सन्मुख होणगे, गुरमत विचारा द्वारा तुहानू निहाल करनगे। साडियां भुल्लां बख्श लैणियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।